कार्यक्रम हुइनालिन यही कुवात 25 गते अटुवा बिहानी 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्फ सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

कार्यक्रम हुइनारिन यही कुवात 25 गते अटुवा बिहानी 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्खर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

वेशभूषा संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी खारुङकी प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई। आदरणीय दादु भैया दिदी बहिनी हुक्र यही कुवार महिना के 25 गते अटवार के दिन चौरौ जिउरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग ओ ठाकुर बाबा बर्गर सञ्जाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका टीम जुटपानी बगनहा हाट बजार मिनाहिलक हो कार्यक्रम में सहभागिता के लाग मई गर अर्जी करती।

कार्यक्रम हुइना दिन यह कुवात 25 गते अटुवा बिहान 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्खर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

0: छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन छ सधैँ बाघसिंह
1: वेशभूषा संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी खारुङकी प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई आदरणीय दादु भैया दिदी बहिनी हुक्र यही कुवार महिना के 25 गते अटवार के दिन 16 जुरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग में ओ ठाकुर बाबा बरघर सञ्जाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका टीम जुटपानी बगनहा हाट बजार में हिनाहिला पोसे कार्यक्रम में सहभागिता के लाग मई गर अर्जी करती।

कार्यक्रम हुइना दिन यही कुवा 25 गते अटुवा बिहान 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्भर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

वेशभूषा संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी थारूंग की प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई। आदरणीय दादू भैया दीदी बहना हुक्र यही कुंवर महीना के 25 गते अटवार के दिन सोरौ जुहरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग में ओ ठाकुर बाबा बरघर संजाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगर पालिका टीम जुटपानी बगनहा हाट बजार में हिना हिला पहुंचे कार्यक्रम में सहभागिता के लाग मई गर अर्जी करती।

कार्यक्रम हुइनारियन यह कुवात 25 गते अटुवा बिहान 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बरभर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

कार्यक्रम हुइना दिन यही कुवात 25 गते अटुवा बिहान 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्भर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।

0: पश्चिमपट्टि। नाम दर्ताका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9842455909 र 9842497517।
1: ये है आपका रेडियो, रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज़, वॉइस ऑफ बर्दिया, वॉइस ऑफ बर्दिया।

0: साथै अर्डर अनुसारका विभिन्न साइजका दुनाटपरी पनि उपलब्ध गराइने सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। थप जानकारीका लागि ग्रामीण महिला दुनाटपरी उद्योग मधुबन नगरपालिका छ श्रीनगर बर्दिया 98165016772 98224-21679 र 98125-10349।
1: वेशभूषा संस्कृति हो संरक्षण ओ प्रवर्धन करी थारुङकी प्राचीन मौलिक कला संस्कृति हो जोगाई आदरणीय दादु भैया दिदी बहिनी हुक्र यही कुवार महिना के 25 गते अटवार के दिन 14 जीवरा जगेना सांस्कृतिक कार्यक्रम ठाकुर बाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग में ओ ठाकुर बाबा बरघर सञ्जाल के आयोजना में ठाकुर बाबा नगरपालिका तीन जुटपानी बगनहा हाट बजार मिनाहुल कार्यक्रम में सहभागिता के लाग मई गर अर्जी करती।

कार्यक्रम हुइनाडिल यही कुवार 25 गते अटुवा बिहानी 11 बजे से आयोजक ठाकुर बाबा बर्खर सञ्जाल समिति ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया।